0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ये तो तेरो मन ओ तेरो या तेरो मन

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो पियम चुन के वेर क्वारो
0: पियम चुन के वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल यू नो का कॉल मी
1: इटी यूनो और रेडियो.